राइट मजाम साथी धुमधाम राइट सपन नयाँ इभी मेरो टियागो इभीसँग लाइफ छ सुपर फन. Elders love it, so do the young. It's safe, it's playful, get the fun, glow.

0: रेडियो संखुवा सभा राष्ट्रका लागि संचार।
1: को नाथ हो त्यो?
2: नाथ होइन, ऊ मेरो हुनेवाला श्रीमान हो। म तिम्रो जङ्गली विवाह त के थाकिसके, बस्दिन म मेरो घरमा।

How dare you? खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की। किस हक से तुमने मुझे छुआ? तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पे। क्यों बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हो? दूर रहो मुझसे।

जाम साथी धुमधाम राइट सपन नया इबी मेरो टियागो इबी सँग लाइट छ सुपर फन Elders love it, so do the young. It's safe.

0: भने पछि साइकल लिएर गयो।
1: साइकल लिएर जाँदा जमाना उहाँ मोटरसाइकलमा पुगिसकेछ। एउटा मोटरसाइकल किन्देऊ, बुहारी ल्याएर देखाइदिन्छु ल।
0: किन्दे होला।